बहनों और भाइयों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आपके रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन जीवन में रवैया के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक गधा या एक गधे की तस्वीर दिखाता हूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एक गधे को दिखाते हैं या उसके तस्वीर दिखाते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? जवाब देने के पहले सुनते हैं ये गीत। ये गीत का नाम है खिलते हैं गुल यहां, फिल्म शर्मीली, संगीतकार SD बर्मन, गीतकार नीरज श्रीधर, और इसे गाया है किशोर कुमार।

दोस्तों, गाने के पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था। उस सवाल का जवाब संभावित उत्तर अधिकतर ऐसे होता है कि ये बेकार है, गधे की तरह है, किसी काम का नहीं है। हमें कभी ऐसा जवाब दिमाग में आता ही नहीं है कि ये वफादार है या ये बहुत ही मेहनती जानवर है। ऐसे जवाब तो हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। तो दोस्तों, जीवन में हम क्या करते हैं? हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। हम उनमें अच्छे को छूट देते हैं, नकारात्मक को देखते हैं और प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में क्या चलता है? अगर कोई चीज जिंदगी में हमारे साथ होती है तो पहले हम उस पर रिएक्ट करते हैं या कार्रवाई करते हैं, फिर हम दिमाग में रुक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं और फिर हमें अपने कार्यों के लिए दोषी हो जाते हैं। तो बहनों और भाइयों, यही है जीवन का नियम। 10% हमारे साथ क्या होता है और 90% हम क्या करते हैं या जो हमारे साथ होता है उसकी प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, यही आपका रवैया है। तो बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं अब ये गीत। और ये गीत है वादा करो, फिल्म है आ गले लग जा। इसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है साहिर लुधियानवी और इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम एक हिमाकण को कितने देखते हैं? ये हिमकंड क्या है? ये हिमकंड है जो बर्फ का गोला है जो समुद्र में होता है। और ये मेरा प्रश्न ये है कि ये हिमकंड को हम कितना देखते हैं? इसका जवाब ये है, समुद्र के ऊपर 10% होता है लेकिन समुद्र के भीतर नीचे 90% होता है। इसी तरह हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें जो देखते हैं वो 10% ही है केवल, जो उसका ज्ञान है और उसकी कौशलता होती है। 90% रवैया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं ये गीत, ये समा और ये फिल्म है जब जब फूल खिले।

इसका उत्तर देने के पहले सुनते हैं ये गीत। कौन है जो सपनों में आया, फिल्म है झुक गया आसमान, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और इसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

बहनों और भाइयों, हमारा नकारात्मक रवैया के दो कारण हैं। पहला, पर्यावरण। जैसे कि हमारे घर में हम कैसे पलते हैं, कॉलेज में क्या हमारी पर्यावरण है, कार्यस्थल में क्या पर्यावरण है, संस्कृति, नेटवर्क। दूसरा, पिछले अनुभव, यानी हमारी धारणा, हमारी विश्वास और हमारी कंडीशनिंग। बहनों और भाइयों, मुझे आपसे एक और प्रश्न पूछना है। क्या हम जीवन में सकारात्मक पैदा हुए थे? क्या हमारे पास कोई विकल्प है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आप खुद सोचिए। और आपसे ये उम्मीद हम करेंगे कि आप खुद सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ही दें। तो आइए सुनते हैं बहनों और भाइयों ये गीत, बड़े

बहनों और भाइयों, अगर हम सोचते हैं कि परिवर्तन की हमें आवश्यकता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी सोचने का, महसूस करने का और व्यवहार करने की तरीका में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और अगर हमें बदलाव की जरूरत है तो कार्रवाई से पहले पॉज बटन दबाए। बहनों और भाइयों, जीवन में किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने से पहले आप पहले रुके, फिर पॉज बटन दबाए, इसके बाद सोचे और उसके बाद कार्य करे। इसका ये मतलब है कि हम रिएक्ट ना करें बल्कि हम रिस्पॉन्ड करें। और बहनों और भाइयों, आपको रिएक्ट ना करने और रिस्पॉन्ड करने की चुनने की आज़ादी है। तो अब सुनते हैं ये गीत, मैं पल दो पल का शायर हूँ। फिल्म है कभी कभी, संगीतकार खयाम, गीतकार साहिर लुधियानवी और इसे गाया है मुकेश।

बहनों और भाइयों, आप पूछ सकते हैं कि इस रवैया का क्या लाभ है, हमें जीवन में ये रवैया क्यों लाना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इस तरह के रवैये का लाभ ये है, व्यक्तिगत प्रभावशालित्व में आपकी बढ़ोतरी होगी, आप एक टीम प्लेयर माने जाओगे, आप समस्या समाधान दृष्टिकोण आपके पास अपने आप आएगा, आप संबंध बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, तनाव और संघर्ष को आप कम कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व और अपने स्वयं के विकास का बढ़ना, आप देखिएगा ये सब लाभ आपको अपने आप आते रहेंगे अगर आप ऐसे दृष्टिकोण रखेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, याद रखें कि किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने से पहले पॉज बटन दबाना ना भूलिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है और आपकी व्यक्तिगत विकास कैसे बढ़ता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, चुरा लिया, फिल्म यादों की बारात, संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, गायक आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

तो बहनों और भाइयों, अब जाने का समय आ गया है। याद रखें कि प्रतिक्रिया के पहले पॉज बटन जरूर दबाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आ गया हो, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आपका रेडियो दोस्त नंदकुमार मेनन। नमस्कार।